सक मल सुने पिरुनु पुण्य में मोहतक बुद्ध प्यानं वांसे के आलोके अपे हादवदत्त मुर्दुले से वैटन अपूर्व भक्ति गीत तंग ओबवित गिने न अपे सुधारण करा एडवर्ड जैकोट के पिरुसु दुहाने वैसा कुछ सवे सत्य आरुत संगीते टे बंदला अपे सितट पिरुसु दु सेत्सुआ गिने न अतिशय आदरणीय गीत वैसा आलोके पुण्यत बुद्ध गुणे सुंदत ओबे हादवदत्त पिरेन दंग ऐसे ने वेसक लबिनवा एडवर्ड जैकोडी।